परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरिर्देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।